0: कोई नहीं मुश्किल, कोई नहीं मुश्किल।
1: We're going to be at the Wish Lodge.